फुंका हम जतने फाजिंग फुंक चांग नि हम जक माया फारो ताई तबुक चेंगना थांग दोंगो तिनी नि फुंग नि कक ब्रक पांदा हायंग नि खरांग

रंगनावो अब हाइकिन सरंगदी नंग गथांग तोंफ्लाइना हने नंग शक शक नो आ सलाइमुं अंगदी जे सलाइमुंगो नंग अहायुंग नो सलाइजाखे नुकना मुजोंगो निनि बायथांनि पुइतु नो निनि वानसुकमु निनि वानसुकमुं नो निनि ककथाय निनि ककथाय नो निनि सामुं निनि सामुं नो निनि लय नो निनि मुलाजा निनि मुलाजा नो निनि याफारमु आव तमुं नो सय लामा नो नों सायि नायमानखे नों खाकामा नो तायाकारदि तांगै हिनमाले जेसक साल सों केबें मुंगोग्लाय तंफानो सों सिनि बखानो गोराग ख्लाय तनखांके सों सिनि जायतकमानि बिसिंते सों सालसा सालसा गबलाय ओंनायनो खरक्सा बरकनि तमुं तै बिनि लांमा बसखांगो बाहाय ओंनाय आव बिनि सामुंनि बिसिंतेनो सिजागो हायनि बागैनो खरक्सा सोग बरकनो तमुंनो नों बिसिंते सिनिना मुचुङै तंखे नों बिनि वानसुमुं बाहाय आबुनोसो नों सायमानना जायतकदि आव सोंहायके आसुक जरा सोंखानालायका गान्धीजी सावैक्लांमानि ककाहाम

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: नों टाउनाव खोनानाय
1: आं एक सार आंनावनो सानम दङ द आं एक आं खागि बुजै बुजुबायबो मा थंयांगै थाखिं ग मामा मिलन उनक बक थमार थाय खानारि बार बुजै खाना त आंखाय बुजै बुजुबायबो मा थंया कर तेरं का थमार ग सानार गया बाखिया कसां थाथाव कसां कक लखिनि न गाबन थाय थाय खानारि बानो
0: नों मतिनि कगलब सायखोनारनाय ना कगलब सावैखोनारनाय
1: कगलबनि बुमुंखाय गोपालनि बला
0: गोपालनि तामो
1: गोपालनि बला
0: बला ताम हमा कलाखियाब
1: आं सासेनै थाबाय खबै
0: दानि
1: कगलबनि बुमुं गोपालनि बला दबल थकमा तुलि सिकायै थांका तुलि सि जात नुगुल कान्दा गया बेरायै माया सिरिनि जिनि लाम्फै बजागै लाम्फै गायसिले लांखा एमां दानखौ सैबोसिलै बबता मनि फला माइरं थुजा गया रन्दक दावैदे आंबा अबहाय
0: सादि सादि
1: आयं आयं माइसिं दे पापखायि थायखा कपाल बला थुंखा आंले बिरिमान मांखा हामबाय सार साखुया थायदिका
0: बा खाना तखाबला हायखे जों थांनायाव कक सालायमानि आबरं नों रमै मानबाय खेनाब्ला जों थांनायाव तु कक सालायखा दैमानिस्लाय आरांसे लक्सिय होनै होनलाय मारक अमहायरक बाहाय बुजिनाबले
1: आमक उनको सार आं थाखाय बुजिबाय दङ बुजिबाय सोबाय सुख्रुबाय सानार गैया आं तांगे आंटि ओं सायमान सार दादा खिदा उनको यां फुनटिनो थाबानो उनको बेलाय मालाय मानि बागै सिलि बजार जागनि बागै बखाजि सिङो सायमान दंफानो खुबै गाहां केपे दलाना रोङियानि बागै आं सानार गैया हायनि थाङो सार
0: ककरै जानाय तपसि मानजांनाय रजं होनि मानि आबसिनि बिसिङो तुमुनो सानाय दंखांखे जों खोनालायानो नों खोनाय दं बेटा दो
1: नायानाहायखे
0: सिन बिसिंगो साब तायब खोनाथ खालाय सुक्रबुयि सावै माना जाथं जों नायलायानो हायखे खोनाय दं दे नों दो हामबाय औ हेके खाबनि मार्केटिं नर खानाय दङ सारसा पइन्ट डग मेगा हार्ज एफ एम उज्जयन्त औ खाबां याख्राय पान्दाव जों दिनै ककटां कगलब कथमारक मानसाक जरदै जों खोनाय दंलायो नायनो हेके हाइनि हाइ टेकेसा कक दुगो साबतंफि हेलो
2: हेलो
0: लामसुगो
2: दुग्रायनि
0: स्वर्णमाला जानाय तपसि तक जोंनाय रजं होनै सालायो खारिबा मानजाया जाबा टक जाखाता ना आउन बागै न कक्रक सालायफोरको किसिम बिसा कक्रक बांलायफोरको सालायता ना औ जानाय हिंखाखौ तपसि

आओ कॉकब्रोक न्यूज हेडलाइंस किसा संग नाइन एलगर शोन हेके उजराव संगमोंग ब्लाय केसेकेरेंग उंमा पातिमोंनो आमजुंना रगई मिया केंद्रनि मंत्री सभाव फास्ट ट्रैक दरबा खानानि बागै सनामग्रामा बिल गोसिमों रखा मंत्री बख्रग नरेंद्र मोदी वीडियो ककमोंग आवाय क्लाइमा यागलो हाक्टरनि सिक्ला रकनि बखाक्तै कक बिति ताई साजाकमोंग मानमाबाई हाक्टरनि सिक्ला रकनो खाकाहाम याफारखा केंद्रनि मंत्री जेपी नादा ताई डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिया दिल्ली कतालो दरबाफांग बख्रकनि आदं रकबाय मालाख्या मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी खना ककति सालनि फुं दामजिसाओ आकाशवाणीनि मन की बात पान्दानि बिसिंतै हाक्टर ताई बुइहा कतरनि लुकुरकबाय कगलाम सालायेन आगिनि पुलिसनि दागिनाय अख्रा अनुराग थैमानि पाति मुंनो मिया एसपी बेरेमो आमजुगनानि बागै दागिमुं रेखा हास्तेनि बारजा मान्जा पुलिस दागिनाय अख्रा जि एस राव मालमाता हामख्राय मंत्री सुधांशु दास मिया आगरतलानि प्रगा भवन खुंबासि मिनि मोबाइल भेटेनारि यूनिट एबा मिनि एम्बुलेन्स सेबसाबन चलख्लाय रेखा हापां मेडिकल कलेजो डिग्री ताई मास्टार डिग्री ओ आसकथाय बांग्रजाखा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नाइकलजाक अरनि ओलनै डिविशन लीग फुटबल बातायलायमुंनि मिया हरनि थोंलाइमाव त्रिवेणी संघ गाबलायंखा बोसकां दामनैसि ब्रियो सिपाहि जला गमति ताइ सालग्रा हांखर वातै गोबां वावि मानो होनै हजाकमुं रेखा नबार तिबार नायखं तिनि सालनि साखानि तुंमारि 33 डिग्री सेलसियासनि गानागिनि टंगानो हागे तापसुजरतै कक ब्रक निउज हेडलाइन्स खानाबाख्या।

0: जंगमा चिनी खातुमा पान्दव खापुनि मारकिसिङ नरोक्न लामसुगो सारसा पोइन्ट डक मेगा हरजो नरोनि किसिङ आओ हाके नरक नरकनि खाना तकजाकमानि रसामुं रक खानानि बागैनाय नरक आंबाय खोरोन हरि मानो नरक नरकनि खाना तकजाकमानि रसामुं ककथाय रसामनाय साबो आबरक नरक आनो साहरदि आं सायतकनाय खापुनि मारकिसिं नरकनो नरकनि खाना तकजाकमानि रसामुं रक खाना रुइनाय आओ और दिपर जराव दिपर ख्रिं ख्रिं बेलाखे तांलाइमा तैलैमानि जरा अ जराव आओ नरकनो रसामुंनि बिसिंति फानो नरनि खानो स्रां रुइ गोसां रुइ नरनि लेंमानो पग रुइ दा मानो आं सायतगाना आव हाके अ जराव नाय नेग्रेसिवन हाके कक दुगो साबतं बबा सिनि खाफां याख्राय पानाव क्रोंहनान बागैदां इदंखा रसामुं खानानान बागैदां इदंखा सेमानिया नाय नेग्रेसिवन साबतं हेलो आव दिपर दिपर काहाम आओ आओ आओ आओ नुनुब दक धर्म अधिकार बर सामुसेनि साखामोन स्वर्गीय सुन्दरनि ना अ मन नाय नेके स्वर्गीय सुन्दर ना बा बेलाय बेलाय हामबाय नुनु बहायनो आव आव बेलाय हामबाय नेके आव सिन बखक जे साहरमानि आव रसा मुंनो नाय नेगेर सोनाके खाबोनो मार्केटिं ना ब साहरका स्वर्गीय सुन्दर आजके भारतनि रसामुं खानार दि होनैनाय हेंके आव अर सामुं स्वर्गसे सुन्दर बिनाब आं नालाय नायनाय तमुनु ताउं मानिया हेंका हेंके तेउ हिसाबफोरखौनो आं नायनियानो द नायनिगोन हेके कक दुगते कैसे साबुतं पि नायनिगार सिवनाक हेलो
1: दिपर काहान सार
0: आओ दिपर काहाम
1: आं उदयपुर महारानी नै राजु
0: औ राजु से ना जरा जरा लेको जरा खाजा गोरों हरनाय गोबां आं हायनो रसामुं रक सुन आं खानार लिया जत न जरा किसो रैदा मानो होनैनाय द हाके सादि मानो राजु मानो
1: আনো
0: এক নম্বর বা বেলাই হামবাই
1: आनि मानदायनि नाना सेति आयां आनि किसिं यारकमान तो ए आब ललित बाजारनि बायराखि ए आब सिमलांनि सेति दै आब क्वाइनि क्वाइनि दाबिसु जम्पै जनानि आब दाबिसुरां
0: খানাদি হিংকে রাজু মহবাদ কে নহি জাতি উদিত নারায়ণ সাধন স্বর্গম নি খরাঙ্গ খানা গানাই আংব খানাসিনাই সাল কে খানাই না লাইগার না না দা ক

हाउ हेके हजरावो सिनि दुग्रायनि स्वर्णमाला साहरमानि रसामुं सरकसे सुन्दर हनै ब रसामुं तांसा खनारदि हनै अ रसामुं न साहरखना हाइमा तङो अंगे ब कहरमानि आफ्रो खनारि मानलिया आं अमदां खा सेमानिया आव म बिन बागै इंगारसितों

0: आओ नाइने फियोन हेक्यो जरो कक्दुगो साबतोङ आओ नाइने गर्ना कक्दुगो साबतोङ हेलो
1: हेलो सर
0: आओ दीपुर कहाँ
1: दीपुर कहाँ कोगमा से बेलाई बालु खानु भाइ
0: हाइनो
1: आ पेरो पेरो जिद्रे आ से शान्ति बजा
0: आओ पेरो जिद्रे

0: खाखलायो सिनि बान्यानि चैत्र बिनि बखानि रसामं खनावैनाय खाबलायखे गसां खाना नायनाय सातंतुंगुइ दंफ्रबो ते गसां मानन मासक खनानाय आं खाखलायो आव और सामं र आसखलायनो गसाम अबो केसेट बायनो सेंग्रो ताले तामलायो माइ कलो ग खलाय नायफियोन हायखौ जरो कक दुगो साबतं हेलो
1: हेलो दारा न बेलाय खेदि बर काम खलम याफरो दिब जरानि
0: बेलाय
1: याफरो दारा न
0: बेलाय हमबाय
1: ए आं यांग सिपसन र पारानि निनि ता खुब रविन्द्र देवरो मा बाय
0: सादी रविन्द्र सादी
1: दारा लाय कक खे बालो खा
0: सादी
1: दारा काम नाम सांगला
0: काम नो बर सामुं खनानो मुसुं सादी रविन्द्र
1: दीता बदिल को दर्शनों की कसम ना रह सकेंगे अब जुदा हो के हम वादा करो तुम और समोता
0: तो फिर मिलेंगे दें छकमो
1: फिर मिलेंगे
0: बेटा बेटा दिल है ना
1: क्या आओ ना दारा
0: दखना दि हाके नों खनाथाव
1: जामनि
0: बेटा दिल हे दरकानो के कसम ब सामानि मदांखा श्यामलिया

0: आओ खबर मार्गिसिंग फिर मिलेंगे फिल्म ने रसामोंग खनाबा क्या सुनो निगम ताई सिरिया गुसाल ने खोरंगो नहीं फिर है क्या उजरो कोक डुगो सबतोंग हेलो
1: हेलो
0: आओ दीपोर कहाँ
1: दीपोर कहाँ दा ना
0: चली
1: देखना ही चलो ना दीपोर कहाँ मारे वो कोक बताये वालों का वालों का कोक
0: आओ आओ आओ दो सादी जिनी सादी
1: ये फिर कनाई चुनाव तो लोग खरंग ही चंगा यंग सिंगा वालों का जिंदगी नहीं थी यंग तीनी फुलर करें कैसा कनाई क्या वो बहुत बहुत हिंदी मने वो रुकुजाना हिंदी मने और समो
0: वाह रुकुजाना
1: और सम जैक ना तेरा बाह
0: और सम खाना मुझे खाता नहीं
1: और सब उन्हें बेलेक ने मुझे कहा था
0: भाई
1: और सब उन जेकना जना निभावे जेरिकट खेलता है कहीं जा रहना वो जेरिकट खायो पुरी है ना
0: सब उन्हें खोरंग वाबो सब रोक आरो नंग सजा मान नहीं क्या ना
1: हाँ
0: सब रोक आरो नायक सब दोष है कर चुदी
1: और आप इनके आप जेगुंडा बेरे निम्बुंगे किचा
0: वो भी जगा और आप है रसामुंग खाना दिया को उलोर काते नी ओ रसामुंग खाना दी इन दिवर का हम आओ कुमार सानो ने खोरांगो और रसामुंग

आओ खबर मारे सिंह नरक ने हमजाक मा चीनी खातुमा पांडा नरक नरक ने खनाटक जगमानी रसाब मंगड खना बाख्या खाखलायो नरक नरक ने खनाटक जगमानी रसाब मंगड खना नरक खबांग सरंग बाख्यान हनाय फियाबा खबंग ने मारे सिंह जंग चीनी जराबाई खाजाक ने बागैनाय जंग तैकाशा चीनी पांडा जंग थांनानै नांगौ आव तामनी हनकांके सिनी जराओ अमहिखनो सिनी पांडा हाइका प्रोग्राम बतांग रक सेट खलाइजाक ताबुक जों तैकाशा पांडा थांगै दङो ओ पांडानि मुंखा सरंगदि ताइ सिदि उंग्रासिदि सरंगदि ताइ सिदि आ पांडा जों ताबुक थांलायनाय खाबोनो मार्केटिंग

वानाव तरुई लगै तामुंनाय मोंसा सिजाया फियाबा बरुनि बुसकांनि थिनांले मनाकबाय कुपलंद नु बेलखे वानामा सिंचा बुइहाय बरगो कलकतर दा अन्नो अंगिजा मानो सेबुग्र ख्लाइजा मानो हायांगांकेबा ओ तांगनाय दैनायनि नुखुंनि बुसा बो बवाहायनो तर्खे लखे बुमा बुफासं तांगमा तैमा पाइलिया अंमाहाय बबो तांगमांदा माथा थांग्लायनो आव खाबने मारिगिसिं बेलाखेसिनि वानसुग जाखथाय तंगो सुखजाया नुखुं ड्रप आउट दंगै रों नक बाय चालै तंगमायखा बर्गनि थिनांनि ककनो वानसुगैनो भारत हापां राइट टू एडुकेशन एक्ट मुंगै केरं कायसा कारियो राइट टू एडुकेशन एक्ट 2009 बिसियो संसजाक फानो फर्स्ट एप्रिल 2010 बिसिनि सिमि सामुंगो फनां जाखा राइट टू एडुकेशन एक्ट 2009 आबुनि नाहार मुं नंखा नखा बिसि दकनि सिमि नखा बिसि जिब्रै उमरनि स्राय रक्नो चला फानंथों बोरै फानंथों जेसा बसं तंथारनि फानो उंथों रां पैसाव उक्लग क्लाइजाक ड्रप आउट उंजाक नखुंनि स्राय रक्नो रोंनगो त्लांनानि ड्रप आउट उंजाक हायखे रोंनगो थांलिया बरकनो हायनो हाय रोंनगो त्लांफिरनानि एडमिशन उंनाबागै बरक मुंसा टेस्ट रनानि नांग्लाक रां लेपसानाय उइनो बरक रोंनगो क्लास वान नि सिमि क्लास एट जरा परिउइ माननाय क्लास एट जरा स्टुडेन्ट रकनो डिटेन हायाके फेल होनैबो आ क्लासनो क्लासो नारगै तनै मानग्लाक हंके नायदि सिनि भारत हाक्टरनि केरंगटा मोसा आर्टिकल 51 ए ब्रेकेट तंग के नायनाय नरुक सावै बुमा बुफा हायाके सरायनि नकनि अख्रा चाक्रा हायाके सरायनो नायनाय संनि फंडामेंटल ड्यूटी हायाके बरकनि ख्लायथायनो बर ख्लायनानि नांसुकमानि बुमा बुफा हायाके जे नुखुंगो सराय तर लगो आर नकनि बरकनि ख्लायथाय तामतं आबुनो सिनानि नांगौ बाक्सा बाक्सा बुमा बुफा बोसारकनो सामुरक सिमिं तांग्रि तंगो सामुरक तांगो बोसै बुजुसंनि नुखुंगो सराय तर लगो सामुं हुमुरक हिमिसा तांगो फियाबा बोसै बुसु होनजानाय संरक आ जरायनो रोंनगो रहरना नांमानि आबो बरकनि ख्लायथाय आबुनो बरक बगै तंगो आबुनो बरक साइमानिया हाके बरनि ख्लायथाय तामुंखा गांके बिसि दक निसिमि बिसि जिब्रै उमरनि सराय रक्न रोंनगो रहरनानि नांसुकनानि नांसुकनाय बरंनि नक गाना कुकनि रोंनगो बरग्न त्लांगै एडमिशन ख्लायै रैनानि नांनाय बरग्न एडमिशन ख्लायनानि बागैनाय बरनि उमरन नायै बरग्न आरो एडमिशन हायाखाबा बरति नारागै मारनाय आर रोंनगबो बरग्न नास नारगनाय हाके राइट टु एडुकेशननि सेक्सन टेन अ ककबो सैजाक दङ बुमा बुफासं नकनि बररक जेस ख्लायबो सराय रक्न नगानानि रोंनगो एडमिट ख्लायनानि नांनाय केरंगो स्राय स्रायखो सैजाकाबो सराय रक रोंनगो फ्रोंमुं मानै दातं बरनि थिनां हामसावैनो तङ आबुनो तै स्राय स्रायखे सिनानिबो नांनाय रों अमहायनो कायसा मानै जे मानैबाय सुसाइटिनो स्लाय मानो बाय थांनो रोंमुं सिमुं बाय कुप्लं ख्लायमानो रों तंखे मोनाकनि पहर फायसक फायो खा खम खम ख्लायो खा खम खम मुंखे खातुंमा फायो खातुंमा फायके खाकसंमा तुबो रोंनो कारै हायंनो वानसुगै मानिया रों ओंखा अमहायनो कायसा मानमुं आबनो खरक जाबो सेगै त्लांगै मानिया रों अमहायनो कायसा मानै आबबाय नों

खनादो तो खरांगो खापने मारे किसिंग नरोनी बागे रसामुंग ताई तांगसा नंग सादी पार्मिता ताई बासरांग निखरांगो नरोनी बागे रसामुंग ताई तांगसा अंग फिगर सीतेंगे

Aw kapone marketing haino hain norokno ersamung taitang sa kanara few nai tabuk ni ersamung mor samung kesam salsa belai ke or samung no khana ne bagai nai borok kobor ma ang laikha ta afrogo mobile bo kreiba video ro bo kreiba tabuni hai kabang khlai nai sing toke hega cinema short film pun hundi mungsa se khlai jak krei afro और समुरो खाना कहाँ के बरोग बुरमातों बुरमासा सही से मान्य गजा आस क्लाइने खाना तोकजा कोई माने आओ और समु कसाम और समु बखानों संकेपली थमे पियोन ओजोरो

बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं। और

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन

0: तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा

0: टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के

नाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।